0: Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita.
1: Prambanan Mandir bahut hi mahatvapurna hai dono desho Indonesia aur Bharat ke liye kyunki isme Ramayan ki kahani iski deewaron par ukhri gayi hai.
0: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
1: Mujhe pura vishwas hai ki ye yatra Indonesia aur Bharat ke logo ke beech mitrata ko aur adhik mazboot karegi. Sanskriti ek aisa pul hai jo desho ko jorti hai, ek dusre ko barawa deti hai aur hamare bhavishya ke liye vishwas ka nirman karti hai.
0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India.
1: Is avsar pe jo conservation aur restoration ho rahi hai Candi Prambanan ke dono desho ke beech mein Indonesia aur India ke sath ho rahi hai.
0: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih.
1: Indonesia ki sarkar aur Indonesia ke logo ki or se main mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ka Indonesia ki 3 din ki rajkiya yatra ke liye hriday se abar vyakt karta hoon. हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे. धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement.
3: मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रभवो जी, उनके साथ यहां आए हुए मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी,
4: मेरा जन्म
3: इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सद्भाग्य है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है. मेरा जन्म वड़नगर में हुआ. हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है. सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है. और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्व